फिर संगत में आके गुरु शब्द नाल अपने आप ही प्रेम बन जाना है। यही तो गुरु की वड्याई है। तो साने बहुत ही प्यार विच अमृत बाणी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत गुरुद्वारा साहब जी के नेम मुताबक रोजाना लड़ीवार गुरु शब्द नाल सांझ बनती है। धन गुरु नानक देव महाराज जी के अमृत बचन आप रोजाना सांझ करन दा निमाणा जा जतन करदे आ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ।

0: निजकार महल पावो सुख सज बार ना होए गो। अमृत बचना दी सांझ पौंदिया खालसा जी, बेअंत भुलां दी माफिया सब दिया हाजरिया प्रवान, लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा गुरमत विचारां श्रवण करवा रहे सन। सतकारयोग ग्यानी गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले पाए साहब जी होणा दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन श्रवण करवा रहे हन। सत्कारयोग रागी भाई जसपाल सिंह जी श्री पौंटा साहिब वाले उत्तन रागी जत्था उन्हां पासों बड़े प्यार नाल सरवण करिए जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी होणा दा संपूर्णता दिवस 30 तरीक नूं आ रहा है, ऐतवार वाला दिन है। उस दिन जो नाल नाल निशान साहिब दे चोला साहिब दी भी सेवा होवेगी, नाल नाल जो संतां महापुरशां दीआं यादां मनाईआं जाणीआं हन। आप संगतां ने इन्हां समागमां विच वध तों वध हाजरी भरनी जी। आओ कीर्तन नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

इतनी हाजरी प्रवान करना, भुला चुका की खिमा करना, सतगुर बख्शिश कर, मेहर भरिया शीस ते हथ रख के सेवा लैन, सारी संगत शीस बख्शियो, आओ सारे नूं सब दा जाओ।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आहाय रंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिह जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरया।

पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देव चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद केसा सुवासा संग निभाया तिन्हां समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी ब्रिथ मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई सतगुर पू

याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुट है निकट ना जाइ हो दूत। सलोक महला पंजवा, मन में चितवो चितवनी।

प्रसाद जय घर कीरत आखिए करते का होय बिचारो तित घर गाव हो सोहेला सिवरियो सिरजन हारो तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहेला हों वारी जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ नित नित जेड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुरे को वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा थेती वारी माहो होआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध भिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भाव है सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंधिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग कहो होए जाते तेरे नाय वासा राग गवड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साध न जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पाव हे जमकाल सहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वडवड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुखमंडा है राग गवड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेला औद कटे दिनस रहनारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एह संसार बेकार संसे में है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एह रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

महाअंधगुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंहानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महाभयान तप्त बहु काम तै हर के नाम की तुम पर शाम जहां त्रेखा मन तुझ आ करखै तै नानक हर हर आमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दुरे जन कोट हर जस करत सन दिन रात हर हर हर औखद साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुगत जुगत हर कै नाम जन को त्रिपद भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपर न भंग हर का नाम जन की वडियाई

चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत गुरु प्रभु की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मंगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्ट मह सुख अर्थ पावे बिरला कोय जन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने सुभर भरे प्रेम रस रंग बजे चाओ साध के संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगा संदल्य बलाग बट बाकी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुखोए सेवक की मनसा पूरी भाई सतगुर ते निर्मल मात लाई

पूरे के गुण गाओ अष्टपति, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतराय चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संजना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेंती करहो, सा संग अगन सागर तरहो।

द्वार, नानक वै ध्यानिय सब आपे सचियार। थापिया ना जाय कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गावी गुणी निधान। गावी है सुनी है मन रखी है पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जा। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रह आसमाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर

मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जी आका एक दाता सो मैं विसर ना जाई।

धरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आंगुण दे, तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे। सुनया है सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया है धरत तबले आकाश।

कह ना सकत केह। अचल मूर्त अनुपहो प्रकाश हम तो ज कहिजय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजय।

ब्रह्मंड स है, खल खंड स है, परते पर है, करुणा कर है, जपा जप है, थप्पा थप है, कृता कृत है, अमृता अमृत है,

दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कर कर के पढ़ पढ़ की जाने, जब उदकर्ष करा करतार, प्रजा तरत तब देह अपार।

0: धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर उच्च भगवान, नानक की भरा बेन अपनी भगत लीला। धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर उच्च भगवान, नानक की भरा बेन अपनी भक्ति लाए। मांगो दान ठाकुर ना, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, कुल चक माफ, तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने स्वादा पर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतह। जो बोले सो निहा, सत श्री अकाल। उठ गई सभा मलेश की, कर कूड़ा प्रसार, डांका बाजे फतेह, निरंकार अवतार, नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार, जग मग जोत बराज, अब जगल नगर मजार, श्री सचखंड के दरबार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। मैं आया दूरों चल के, तकी तो सुनाई जीओ, मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख गुआई जीओ। तुम दाती ठाकर प्रत पालक, नायक खसो हमारे, निम्ख निम्ख तुम ही प्रत पालो, हम मार्ग तुमरे तारे। सजन सच्चा पातशाह, सिरसा दे साहू,

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पनत नानक परम पट खूले।

0: प्रभो सिमरे से पत बंचे,
1: प्रभो सिमरे से जन परवान,
0: प्रभो सिमरे से पुर प्रधान,
1: प्रभो सिमरे से बे मोहताज,
0: प्रभो सिमरे से सबके राजे,
1: प्रभो सिमरे से सुखवासी,
0: प्रभो सिमरे सदा बनासी,
1: सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्लाह,
0: नानक जन की मंगेर वाला,
1: प्रभो सिमरे से पर उपकारी,
0: प्रभो सिमरे ते सद बलिहारी,
1: प्रभो सिमरे से मुख सुहावे,
0: प्रभो सिमरे

0: सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विलास
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
0: ब्रह्म ज्ञानी।

0: संग हेत
1: नाशने काहू की निंदा
0: साते जाने आपस को मंदा
1: गुरु प्रसाद मिखिया पर हरे
0: मन की वासना मानते डरे।

0: करता रचना।
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्पो पाए,
0: कई कोट पाथर बिरक निप जाए,
1: कई कोट पौन पानी बेसंतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट ससियर सू नखतर,
0: कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राज तम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत अर सासत,
1: कई कोट किए रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट किए चिर जीव,
0: कई कोट गिरी मेर स्वरण थीव,
1: कई कोट जखिन प्रसाच,
0: कई कोट भूत प्रे सुकर मेर गाच,
1: सबते नेरे सबहू ते दूर,
0: नानक आप लिप्त रहा भरपूर,
1: कई कोट बदाल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी।